मित्रन नाच इष्टन नाच मात पिता तब लज्जया करन क्रोध अखाद्यं खाद्यं साजं साज समझया त्राहे त्राहे सरन स्वामी बग्यापत नानक हर नर हर। इन्दे एडा वड्डा लोह मली जाए हे लोभा लंपड़ संग सर मोर है अनक लहरी जिवें समुद्र चो लहरा उठ दिया ने। अगर समुद्र वेच कोई गोते खा जावे ते उरला परला बंदा नजर नहीं आता। जिहड़ी लोभ लहर दी लहर वेच चला गया उन्हूं उरला परला नजर आउंदा ही नहीं है। लोभ लहर अत नीचर बाजे काया डूबे केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तारले बाप बीठला। अनक लहरी का लोड़ते तहवंत जिया बहु प्रकार अनक पांत बहु डोलते नाच इष्टंग नाच तो भाव नहीं इष्ट गुरु का भी लिहाज नहीं रखता। माफ कर दियो लोभी पुरुष मां बाप का भी लिहाज नहीं करता। उन्होंने कहता ताडे बाले कढ़ दूंगा मैं जे मैनू नाणा दिता तो तुहानू मैं दस देंगा। उन्हों का भी लिहाज लोह विच आके नहीं करता। मां बाप नू भी छड़ दिंदा है कबोल बोल बोल जांदा है। हे लोभा नच इष्टंग नच मात पिता तब लज्जिया शर्म नहीं मनदा लोह विच आके। नच मात पिता तब लज्जिया करन क्रोध लोह विच आके जिहड़ा नहीं काम करन वाला वह भी गुरमुखो करदा जे। जिहड़ियां चीजां नहीं खाण वालियां लोभ विच आके वह भी खांदा जे। तां ही तां गुरदेव जी कहिंदे लभ कुत्ता लभ कुत्ता। किसे नूं कहो ते गुस्सा मन जावेगा। हुण बाणी नूं कौण कहेगा भी तू भाई ना बोल कह लभ कुत्ता कूड़ चूहड़ा ठग खादा मुरदार। एक बोल होर भी उहदा साहिबां दा ज्यों कूकर हरकाया धावै दे दस जाए। ज्यों कूकर हरकाया हलकिया कुत्ता दौड़दा है ना वह तेवें कहिंदे जिहड़ा लोभी पुरश है हालत इदां दी बन जांदी है। तुसीं कहो भी हलके कुत्ते च दोष हुंदे ने तुहानूं पता है ना कुछ दोष की होंगे वो मूँह चो की जाती है झग हल्के कुत्ते मूँह चो झग जाती है। एक तुम दोष का होर बड़ा पता है वो पूछ सीधी हो जाती जे तुम एक होर भी पता है वो पानी तो बड़ा डरता है। तुम होर भी पता है जो हल्का हो जाता अपने तो पराए न भी कटदा वो फिर लिहाज थोड़ी रखता है। कहिंदे लोभी पुरश हल्के कूकर वर्गा हो जाता है झक जाती सी ना मूँह चो। लोभी पुरश के मूँह चो निंदिया रूपी झक जाती है। कि झक जाती है निंदिया रूपी झक जाती है। ये हल्का कुत्ता पानी तो बड़ा डरदा है ना। लोभी पुरश जिथे साध संगत में नाम जल सरोवर है वो किनारे किनारे नहीं आता। जिवें अपने पराए नूं कटदा हलका कूकर लोभी पुरश अपने मां बाप भैण भरा दूर नेड़िया नूं भी ठगण दा जतन करदा। जिवें उहदी पूछ सिद्धी है वह सारिआं अगे हाथी टटदा रहिंदा है। साहिब जी दे अज बोचन आए ने काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए। भई गुरु दे चरणा दी शरण विच आया काम क्रोध लोभ खेड़ा छड़ जांदे ने जीव नरलेप हो जांदा है।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नमः सतगुरु ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदि सिमरव सिमर सिमर सब पाव काल कलेह तन माह मिटावो सिमरव जास विषम पर एक है नाम जपत अगमत अनेक है।

सिमरे से सुखवासी प्रभु कव सिमरे सदा विनासी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रुवाला प्रभु कव सिमरह से पार पकारी प्रभु कव सिमरह दिन साध सद बलिहारी प्रभु कव सिमरह से मुख सुहावे प्रभु कव सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभु कव सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु कव सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभु कव सिमरह तिन अंध कनेरे प्रभु कव सिमरह बसे हर नेरे।

सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलुखत हरे साधक संग नरक पर हरे साधक संग ईहां ऊहां सुहेला साध संग बिछरुत हर मेला

प्रभा ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी हत्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नान ब्रह्म ज्ञानी कर विनाश

प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने,

करण कमल हृदय में उर धार हो, करण कारण सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर गह हो नाम हरवाथ। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राख मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन कौ चार कुंड उठ तावे सो, तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख काउ नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत।

कहु गणी। जब एक हरग में पार तब नरक सुर्ग कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभु सह सुपाय तब शिव सगत कहो कित ठाय। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कमल निड कमन कद डरे। अपने चलते आप करने हार नानक ठाकुर अग में पार अभिना।

दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजाई जे तिस गुण कोए करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धर

करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तथे खंड मंडल ब्रह्मांड जे को कथे ता अंत न अंत तथे लो अलो आकार जिव जिव हुकम तवै तबकार विखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद अतिहार पाहो खला अगंत बताओ भांडा पाहो अमृत तटाल घड़िया शब्द सची।

अलेख है, पेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनत है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वा प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग तरानं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग जोगता, सर्वंग मुक्ता, रसावल छंद त्वा प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगा स्वरूपे दरबाद विभूते अनंगी रामे दरभंगी दरगामे दरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्र न मित्र न ताते न भाते न जाते न पाते नरसाकं सरीके मितो मीके सदैवं प्रभा है अजाह अजाह भगवती छंद त्वा प्रसाद, के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, महसूल सलाम है, समसूल कलाम है, के साहिब दिमाग है, कृष्ण चराग है, कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज कर हिंद है, करीमुल कमाल के सुनल जमान है, गरीबुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीबुल शिकन है, रासुल फिकन है, कलंकंग प्रनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गरीम है, रजाय ग्रहीम है, समस्तुल जबा है, के साहिब ग्राह है, के नरकंग प्रनाश है, बहसुल निवास है, के सरबुल गमन है, महसुल रमन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अदीस है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीस है, समस्तुल अदीस है, अल हमें अदेसल लेख है, मेसुल पेग है, जमीन जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कुमार है, जुरत जमाल है, के चलंग प्रकाश है, के मित्तो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के मित्तो विभूत है, के मित्तो प्रसाह है, के आत्म प्रभा है, के चलंग अनंग है, के मित्तो अभंग है।

सगरी सृष्टि दिखाए अचंबव्या जुगा स्वरूप अभ्रच्छाभेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठ बात पाता सकल मलेश करो रण खाता जे आस तो जिताब शरणी भरे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो काल को एक बार ते आए ताके काल निकट न ऐह रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट चरे तत्काला कृपा दुष्टन जाहे ने हर हो ताके ताब तनक मैं हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब हो दुष्ट शावाय सके न कोई

बसंत स्वर्ग लोक कह जितते पृथ्वी नवखंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है। बसंत स्वर्ग लोक कह जितते पृथ्वी नवखंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है। कौतक कोड तमाशिया।

गुण अर तारे बिण से जाएंगे सगल निरारे। आकाश गगन ग्रीव वनवास सचे पातशाह जी कहिंदे सारे बिण से जाने ने इत्थे बस नहीं जे दिन स रैण दिन स रैण भरत अर भेदा शास्त्र सिमरत बिण सेंगे बेदा। साहब जी कहिंदे जे दिन रात नहीं रहा शास्त्र नहीं रहे ते तेरे सुख किथे रहने ने, जे दिन रात रहेगा तां सुख रहने ना। इस करके गरीब निवास जी अज कृपा करदे ने बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नवखंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण। जे सतगुरु जी का नाम विसर गया है ना साहब जी कहिंदे उद्यान बिया बाण जंगलां विच ही फिरदा है उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी सुवाण सियाल खर है। उद्यान बसन ये जंगल है ते किसी ने सवाल किया जी जंगल विच तां जानवर हुंदे ने साहब जी कहिंदे इत्थे भी जानवर तुरे फिरदे जे उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी सुवाण कुत्ता सियाल गिदड़ खर है गदा जेड़े लोभी ने कुकर वर्गे ने जेड़े डरपोक ने गदड़ा वर्गे ने जेड़े ऐबड़ जिद्दी ने गदिया वर्गे ने। सीधे जे बोलने अर्थ कोई ऐसी गल नहीं है। प्रोफेसर साहब सिंह जी का टीका तुम पढ़ के वेख लो बहुते गुरमुख सिख वो टीके पढ़ते हैं मेरे गरीब निवास सचे पातशाह जी कृपा करते ने। इस करके तू इत्थे गुरु चरणा च आके बेनती करिया कर गरीब निवास ना मैनू स्वर्ग की लोड़ जे ते ना मैनू नरकां दा कोई डर पै रह गया। जिहदी सुरत टिक गई है वह नरकां दा कदे डर नहीं जे मनदा ते स्वर्ग जाण दी कदे इच्छा तांग नहीं रखदा। गुरु की अमृत बाणी दे अमृत वचन ने क्या नरक की है नरकां दीआं गल्लां करदे हो क्या स्वर्ग विचारा ते की विचारे स्वर्ग दीआं गल्लां बातां पाउंदे रहिंदे हो। संतन दो इरादे जिहड़े रब दे प्यारे दोनां नूं पासे कर दिंदे ने वो कहिंदे ठहरने वाले ठहर जाओ हम तो सफर करते हैं मेरी मंजिल स्वर्ग नहीं है मेरी मंजिल नानक दा रूप होना है मेरी मंजिल जेड़ी है कलगिया वाले दा रूप होना है उहदा स्वरूप बन जाना है मंजिल वो है खंडे बाटे दी पौ लई है गुरु ने रूप दिता है जे रूप दे दिता है उस रूप नूं सांभ के रखना है किते रूप गवाच ना जावे मेरे साहिबां दा। गरीब निवास सचे पातशाह जी कहिंदे क्या नरक क्या सुरग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन सिंह आसन जिहड़ा डोलन वाला नहीं है अब तो हुण तां अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिलहै सारंग पानी राम कबीरा एक पए है कोए ना सकै पछानी संता मानो दूता डानो एह कुटवारी मेरी दिवस रैण तेरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी हम कूकर तेरे दरबार पौके आगे बदन पसार पूर्व जन हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई हुण मिटिया नहीं जांदा पहला भी तेरे सा हुण भी तेरे आ जिथे दाता रखे उथे स्वर्ग वर्गा ही माहौल बन जावे ए बख्शिश कर दे सतगुरु जी। कबीर सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर कै प्रसाद चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद सदा पातशाह आद अंत विच आप जी दे चरणा च निवासा हो जावे। गरीब निवास जी दे अमृत बचन ने सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मान दा किश नाहे वसूरे। वाहिगुरु वाहिगुरु।

जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी, आप संगतां ने अमृत वेले दे दवान विच हाजरी भर के गुरबाणी कीर्तन कथा दे लाहे प्राप्त कीते हन। सतगुरु साहिब जी कृपा करन, सब दी दर हाजरी प्रवान करन, दरों करो नाम दान, चढ़दी कला दी दाद बख्शन जी। इत्थे अमृत वेले दवाना दी संपूर्णता है। शामा दे दवाना विच आप जी ने वध तों वध गुरु घर हाजरियां भरनियां जी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: परे प्रभु
1: अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी।
0: वाहे गुरु
1: एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही एक तोही
0: चाचरी शान गोविंद।

0: कदे न छोड़े मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम सियो ए हस्ती घोड़े प्रीत लगी हर नाम सियो ए हस्ती घोड़े राज मिलक खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े राज मिलक खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े टाडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े टाडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े
1: नानक
0: मंतन चाओ एहो नित प्रभ को लोड़े
1: नानक
0: मंतन चाओ एहो नित प्रभ को लोड़े
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर रूच भगवान नानक की प्राप्त बेन अपनी भक्ति ला धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर रूच भगवान नानक की प्राप्त बेन अपनी भक्ति ला धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज कोट कोट पढ़ना भुल चुक मां तेरे चरण कमला वास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़दी कल तेरे भाणे स्वागत वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु जी की फतह
1: जो बोले सो निहा सत श्री अकाल बहुत बहुत
2: सतनाम श्री वाहिगुरु जी ओ मैं आया दूरों चल के तकी तो सुनना जियो मैं आसा रखी चित मैं